0: जवाब सच्ची सच्ची बताओ, वो या तो खुद ही छलेड़ा है या इतना मनहूस को छलेड़ा उनमें घुस के हम लोगों को तंग कर रहा है। तो गंभीर बात है।
1: आए, आ, मुझे
2: आमें खा, आमें खा, आमें खा, आमें खा।

इस वीक के सीक्यू का। तो हमारा इस वीक का सवाल है, जो गाना आप अभी सुनेंगे उसमें आवाज किसका है? और हमारा पता, सीने सफर, केयर ऑफ HMV FM, 2 Ribbon Street, कोलकाता 16। सीने सफर, केयर ऑफ HMV FM, 2 Ribbon Street, कोलकाता 16। तो एक बार फिर इजाजत लेते हैं हम, मगर इसमें ना है कोई गम, क्योंकि लौट आएंगे हम अगले शुक्रवार इसी समय इसी दिन। सो बाय एंड टिल देन, ट्यून ऑन टू HMV FM 107 MHZ।